अपने खातर दुनिया मर दी मिट दी आईए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाईए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाईए। चरखड़िया ते चढ़ना बंद बंद कटवाना बड़ा ही औखा है, सरबंस बार के धर्म निभाना बड़ा ही औखा है, मखमल छड़ के कंडे आते सोना बड़ा ही औखा है।

0: Harpy Safritum vade una da dost, una da hamsafar, ते उन्हें दे दादाजी दिया रचनामा कौन बड़ा। जिला है शेरपुर दे शहर गढ़दी बड़ा दा। गायक रिंकू शाह दीवाना, रिंकू शाह दीवाना हरप्रीत वांग ही बहुत ही सुरीली आवाज़ दा मालिक है। ते इस दे नाल दी नाल उस दे हत्थां दे विच भी संगीत है, उस दे गले दे विच भी पूरा सोज है। ते ओ जिन्हां शब्दां नूं अपने गले दे विचों उतारदा है तां उत्थों बहुत ही सुरीली आवाज़ निकलदी है। उस दे नाल ओ श्रोतियां दा मन मोह लैंदा है। रिंकू शाह दीवाना भी इस बार चरण सिंह सफरी जी दी एक धार्मिक प्यारी इतिहासिक रचना लेके हाजिर हो रहा है। रिंकू शाह दीवाना जी, थोड़ा प्रोग्राम गौंदी शाम दे विच निघा स्वागत है।
1: हैलो जी, सत श्री अकाल। जनाब चरण सिंह सफरी, पंजाब दे उगे शायर, जिन्हां ने कई धार्मिक गीत पंजाबी मां बोली दी झोली पाए और सिक्खी दी सेवा कीती अपनी कलम राही। उन्हां दी एक रचना, एक गीत धार्मिक आप दी नजर करन लगा हां।

0: जिनकी कल तड़पना पड़ी, जिनकी याद में
1: वाह
0: तड़पना पड़ी, जिनकी याद में।
1: जी,
0: हाँ जी,
1: थैंक
0: कल
1: यू जी।
0: तड़पना।

जेड़ा कपड़े करे करोड़ा बिच बसे ओनू लीडर मन देने। पेन बैंक च 2 रुपया दा जेनू तागे दे नल बन देने। जिथे रब कर संगता जुतियां नू, जिथे रब कर संगता जुतियां।

पासे खुदाइया सबे चलिए ता एक कर्म कमाने कड के कोई वैर जावी चलिए ता एक कर्म कमा

मैं सदा तेरे नादार उड़ा रेहानी निकल गया हाँ दार उड़ा मंजिल दे वाले चले सी नी मंजिल दा हुन राए थोड़ा मैं सदा तेरे रादा डोड़ा रेहानी निकल गया हाँ रा रोड़ा मंजिल दे वाले चले सी नी मंजिल दा हुन राए थोड़ा मेरे कुप हो नेरे नू

रचना गजल कुछ इस प्रकार है दोस्तों। करी करी के मैनू याद, रोया करेंगी तू। करी करी के मैनू याद, रोया करेंगी तू। पलकां नू हंझुआं दे नल पिगोया करेंगी तू। करी करी के मैनू याद, रोया करेंगी तू। हाय करी करी के मैनू याद, बदलां दे विच, बदलां दे विच चन्नी जदों मुस्कुराएगा। बदलां दे विच चन्नी जदों मुस्कुराएगा।

बार ही मिलती है ये जिंदगी, काम आना किसी के है एक बंदगी। रोने वालों को जो भी हंसा था रे, रोने वालों को जो भी हंसाता रहे, असली है।

ऐसे ही तो जरूरी है मीठे वचन, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है एक शमशान का, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है एक शमशान का।

खुश रहे जो सदा उसकी मौज में, दास सच्चा वही तो है भगवान का। खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में, दास

बीते पल में याद कराता नहादा विश्वासिक दे गम दे मारू तली दे अंदर डाची कुमी सदरां दे चार चुफेरे ढूंढ जावा सुन मेरी हरदास कदे।

का सफर, आते जाते हुए मुस्कुराना, हंसते गाते दिन बिताना, हाँ जिंदगी ये कहे।

साथ सफर का रूठे ना, रूठे अगर तुम ना लेना। साथ सफर का रूठे ना, रूठे अगर तुम ना लेना। मौका हरगिज ना तू गवाना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ, जिंदगी ये

एक दिन ऐसा आ जाएगा जिस दिन तू चुप हो जाएगा। एक दिन ऐसा आ जाएगा जिस दिन चुप तू हो जाएगा। इस बात को भूल न जाना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ, जिंदगी ये

अपने खातर दुनिया मर दी मिटदी आईए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाईए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाईए। चरखड़ियां ते चढ़ना बंद बंद कटवाना बड़ा ही औखा है, सरबंस बार के धर्म निभाना बड़ा ही औखा है, मखमल

रही हैं जी, लिखी हुई शुगल जी ने है। ते अक्सर मैं छोटी जदों हुंदी सी, चौथी पंजवीं च, तां असी एक गुनगुनाउंदे हुंदे सी मुंह च, ते वो मैं तुहानू सुना रही हां जी।

0: Harbi safritom vade. Una da dost, una da hamsafar, ते उन्हें दे दादा जी दिया रचनामा कौन बड़ा। जिला है शेरपुर दे शहर गढ़दी बड़ा दा। गायक रिंकू शाह दीवाना हरप्रीत वांग ही बहुत ही सुरीली आवाज दा मालिक है। तो इस दे नाल दी नाल उस दे हत्थां दे विच भी संगीत है, उस दे गले दे विच भी पूरा सोज है। ते ओ जिन्हां शब्दां नूं अपने गले दे विच उतारदा है तां उत्थों बहुत ही सुरीली आवाज़ निकलदी है। उस दे नाल उस श्रोतियां दा मन मोह लैंदा है। रिंकू शाह दीवाना दी इस बार चरण सिंह सफरी जी दी एक धार्मिक प्यारी इतिहासिक रचना लेके हाजिर हो रहा है। रिंकू शाह दीवाना जी, थोड़ा प्रोग्राम गौंदी शाम दे विच निघा स्वागत है।
1: हैलो जी, सत श्री अकाल। जनाब चरण सिंह सफरी, पंजाब दे उगे शायर, जिन्हां ने कई धार्मिक गीत पंजाबी मां बोली दी झोली पाए और सिक्खी दी सेवा कीती अपनी कलम राही, उन्हां दी एक रचना, एक गीत धार्मिक आप दी नजर करन लगा हां।

0: नहीं, फेलियर फेलियर तुहाड़ी लाइफ च बहुत जरूरी है।
1: जी।
0: कोई भी तुसी सक्सेस नू अचीव करना है, एक बारी जे तुसी फेल हो जांदे हो,
1: हाँ
0: मैं
1: जी
0: कहिंदा कि ओह वरदान हुंदा है, ठीक है, क्योंकि
1: जी
0: ओहदे बाद तुसी सारी उम्र अपने उम्र जिहड़ा है संभल के चलते हो कि पिछली बार
1: हाँ
0: मैं ये फेल आया सी इस कारण तो फेल होया सीगा,
1: कोशिश हो जाती
0: कॉशियस हो जांदे। बिल्कुल,
1: जी।
0: फेलियर तो बाद जिहड़ा उठना हुंदा हैगा वो बहुत तुहाड़ा लाइफ
1: और
0: है।
1: जरूरी है जी।
0: वो स्टेप जे तुहाडा चंगा चला जाता है उस तो बाद तुहानू कोई नहीं रोक सकता। जे तुसी फेल हो गए, बह जाओगे, यू क्रिप करन लग जाओगे कि
1: हाँ
0: मैं तो फेल हो गया
1: करेंगे।
0: जी, मैं हम कुछ नहीं कर सकता लाइफ दे विच, मैं वो छोड़
1: रब
0: देता,
1: ने
0: मैं
1: ठीक
0: रब नू दोष देता,
1: नहीं
0: गुआंढियां नू दोष देता, इस तरह
1: किया
0: कर लिया, फिर उथे ही तुहाडा जिहड़ा है सारा खराब हो जाना फोकस। जे तुसी खड़े हो गए उस तो बाद फिर तो तुहानू कोई रोक ही नहीं सकता।
1: बिल्कुल, वो जरूरी है जी।
0: बिल्कुल
1: गिरते हैं शाह सवारी मैदाने जंग में,
0: बिल्कुल
1: वो तुम
0: बिल्कुल
1: क्या
0: बिल्कुल
1: गिरेंगे। ऐसा जरूरी है कि बंदा घट्टो घट तुरे तो सही। वो कोई हिम्मत ना रखे कि कल्पना चावला ने उन्हें लिखा कि फॉलो योर ड्रीम्स, अपनी कंध ते लेके ला लिया, तो वाकई उन्हें ड्रीम फॉलो किया ते
0: बिल्कुल
1: स्टार की यात्रा की। ते ये जरूरी है जिहड़ा कोचिंग, एक आपां गल कर रहे सीगे कि जिहड़ी कोचिंग दी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बंदे नूं मैन टू मैन वो वेरी करती है, किसी नूं लोड़ है किसी नूं नहीं लोड़ है। फिर भी जिहड़े कोचिंग सेंटर्स है, ये तो मशरूमिंग अप इन्हां दी इन्नी ज़्यादा हो रही है, इन्हें दी कोई सिग्निफिकेंस अपन नूं की लगती है जिहड़े।
0: कोचिंग एक भेड़ चाल बन चुकी है आज के जमाने दे विच।
1: जी।
0: कोचिंग मैं कहना कई कई बच्चे इस तरह के होंगे ने कि उन्होंने कोचिंग की रिक्वायरमेंट हो जाती है कि बिना कोचिंग के असं पढ़ ही नहीं सकते, एंड दे आर डूइंग वंडर्स। कोटा है,
1: हाँ जी हाँ
0: कोटा
1: जी हाँ
0: दिल्ली
1: जी
0: एक
1: हाँ,
0: हब
1: वो
0: बन
1: तो
0: गया
1: पूरा
0: है,
1: कोचिंग जंगल बन गया
0: उत्थे
1: जी
0: हब बन गया है, तो उत्थे जिहड़े बच्चे निकल रहे ने काफ़ी सक्सेसफुली निकल रहे ने, बट
1: जी
0: तुसी
1: जी
0: परसेंटेज वेखो उत्थे
1: जी
0: जो लख बच्चे जा रहे ने तो 100 बच्चा निकलता है,
1: ओ जी बिल्कुल
0: ठीक है। ये चीज़ नू आपां 100 दी अचीवमेंट नू देखते हैं कि 100 बच्चा कोटा ने निकालता या दिल्ली ने
1: निकालता। हाँ
0: निकालता
1: जी
0: या कोई पर्टिकुलर शहर इस तरह का जिहड़ा 100 बच्चे हर साल निकाल रहा है, बट उत्थे परसेंटेज भी देखी जाए कि कहड़े बच्चे नहीं निकालते वो अगे की करते पए ने।
1: बिल्कुल
0: मेरा
1: सही जी
0: कंसर्न नहीं है कि वो बच्चे फेल हो रहे ने, मेरा कंसर्न ये है कि फेल होने तो बाद उन्होंने उत्थे कोई काउंसलिंग उत्थे हो रही है
1: हाँ जी हाँ
0: कि
1: जी
0: वो बच्चे जिहड़े कि किसी कारणवश नहीं निकलते पे,
1: नहीं
0: अपने
1: निकल।
0: करियर च नहीं निकलते पे,
1: हाँ जी हाँ
0: कि
1: जी
0: वो फेल होने तो बाद अगे होर मेहनत करते हैं, अगे होर ट्राई करते हैं, अगे कितने कोई डाइवर्स फील्ड के विच चले जाते हैं, डिस्पर्स हो
1: जी
0: जाते हैं, कि
1: हाँ
0: वो उतने ही स्टक रह जाते हैं अपने करियर के अपने लाइफ के पॉइंट पे कि जी मैं तो हूँ निकलना ही है 6 7 साल 8 साल अपने भावे मैं खराब कर लवा।
1: जी।
0: सो इस तरह के जो कोचिंग सेंटर ने उदो पेरेंट्स का अगेन फ्रेंड्स का पीयर ग्रुप का
1: प्रेशर
0: इवन इवन कोचिंग सेंटर्स का रोल बन जाता है कि बच्चों को ढंग ना गाइड करन, 3 4 साल हो गए नहीं निकलता पिया, एंड अगे लाइफ से या तो उन्होंने कहो कि एक टाइम लिमिट दे दो कि भाई इन्ना टाइम तू ट्राई कर ले निकल दो,
1: हाँ
0: उसके बाद अपना प्लान बी ते आ जाओ। एक प्लान बी होना लाइफ से हर चीज़ से वो
1: जरूरी
0: बहुत
1: है,
0: जरूरी हैगा,
1: एक बैकअप
0: एक
1: प्लान
0: बैकअप
1: जरूरी है। हाँ
0: जिवें
1: जी
0: तुहाडे स्टूडियो से बैकअप प्लान तुहाडे हर चीज़ का होंदा हैगा,
1: बैकअप प्लान
0: वो बैकअप प्लान लाइफ से होना भी बहुत जरूरी है कि कितने कोई
1: बिल्कुल
0: स्टक करके तो तुसी प्लान बी ते आ जाओ। तो मेरा
1: जी।
0: कंसर्न यही है कि जो कोचिंग सेंटर से तुसी जा रहे हो, कोचिंग के बावजूद भी कुछ परसेंटेज 99% तुसी सक्सेसफुल नहीं रहोगे,
1: हाँ
0: 1% ही
1: जी
0: तुहाडा सक्सेस चांसेस है। उस
1: जी
0: तो बाद अपना जो प्लान भी जरूर अपने नाल रखना चाहिए है, या तो पढ़ाई के नाल नाल तुसी कोई जॉब ज्वाइन कर लो, या तुसी अपना कोई नाल साइड बिजनेस शुरू कर सकते हो। अजकल मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इस तरह के काफ़ी
1: सारे आ
0: जोड़े
1: रहे हैं,
0: प्रोग्राम बनते हुए
1: बड़े
0: ने,
1: अच्छे
0: तुसी
1: प्रोग्राम हैं
0: एंटरप्रेन्योरशिप में जाके काफ़ी चंगा इन्वेस्टमेंट दे अजकल साधन बन गए ने, तुसी
1: जी
0: नाल
1: जी
0: नाल कर सकते हो, नाल नाल अपने ड्रीम अचीव करने का भी जोड़ा है अटैम्प्ट कर सकते हो।
1: बिल्कुल
0: बट
1: बिल्कुल।
0: फेल हो गए, फेल होने तो बाद तुसी ना उठे फिर उत्थे करियर जोड़ा है खत्म
1: क्योंकि
0: है।
1: जिहड़ा फेल हो के फेल पास होना तो जिंदगी का एक वो
0: बिल्कुल
1: यही जिंदगी है, लेकिन
0: बिल्कुल
1: इतने प्रेशर इन्ना होंगे उत्थे। जो आप कोटे की गल करिए जां इवन जिहड़े साडे सराउंडिंग होर शहरां दे विच भी कोचिंग सेंटर चलते हैं, जदों पेरेंट्स उत्थे भेजते हैं बच्चे नूं, वो इन्हों एक ग्रंटड मान लेंगे कि हुण उत्थे चल गया, दैट इज बस ये हो गया बन गया जो आप बनाना चाहते हो। उस उतों बच्चे दे जिहड़ी स्ट्रेस लैवल कितने ज़्यादा बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल
1: ते आपां ये भी देखते हैं बड़ी दुखदाई खबर आती है कि उत्थे आत्महत्या कर ली किसी बच्चे ने,
0: बिल्कुल
1: कुछ घट गया वध गया नंबर कुछ ऐसा हो गया है। ये एक माड़ा असर जिहड़ा आपां समझते हैं कि पैंदा है बच्चों का। वो प्रेशर जिहड़ा है उन्हों घट मैनेजमेंट है जिहड़ी स्ट्रेस मैनेजमेंट है, ये बच्चा किवें उन्हों कर सकता है उत्थे जिहड़ा बंदा उत्थे है।
0: एक हैरानी वाली गल जड़ी सामने आ रही है, स्ट्रेस जड़ी मैनेजमेंट है फेलियर से भी नहीं है, सक्सेस से भी आजकल स्ट्रेस हो रहा है।
1: अच्छा
0: बच्चे
1: जी
0: जड़े फेल मतलब फेल मैं कहूँगा नाकामयाब हो जाते हैं किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से, उन्होंने खबर आदियाँ
1: हाँ
0: ने
1: जी हाँ जी
0: कोई किसी फील्ड से चला जाता मतलब डॉक्टर।